0: लूल, अदरक और हरी प्याज डालकर खुद अपना डिपिंग सॉस तैयार करेगा और जायके के लिए थोड़ी सी सोया सॉस और सुर्ख मिर्च भी इजाफा करेगा। खाने से पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उदून को 2 से 3 मिनट तक गर्म कर लीजिए। एक तपाई पर मेज के वस्त में रखें और गर्म उदून वाला बर्तन इस पर रख दीजिए। बर्तन से गर्म उदून निकालिए और सॉस में डुबोकर खाइए।
1: 4 अफराद के लिए कायाकी तैयार करने के अज्जा नोट कर लीजिए। आपको ज़रूरत होगी 1 डिब्बा या 200 ग्राम नमकीन महलूल के साथ डिब्बा बंद मैकरेल, 4 कप या 800 मिलीलीटर पानी, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 150 ग्राम पालक, 250 ग्राम चीनी बंद गोभी और 1 टुकड़ा अदरक। पालक की जड़ें काटें और इसे 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में काट लीजिए। बंद गोभी को 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में काटने के बाद इसके सफ़ेद डंठल वाले हिस्से को 1 सेंटीमीटर और सब्ज पत्तों वाले हिस्से को 2 सेंटीमीटर चौड़े टुकड़ों में काट लें। अदरक को छीलकर रेशों की मुखालिफ सिमत से कद्दूकश कर लीजिए। 1 फर्द के लिए एक छोटे बर्तन में 1 कप पानी, 1/4 नमकीन महलूल के साथ डिब्बा बंद मैकरेल, 1/2 खाने का चम्मच सोया सॉस डालकर दरमियानी आँच पर पकाइए। जब आमेजा उबलने लगे तो 1/4 सब्जियां बर्तन में डाल लें। सबसे पहले चीनी गोभी का सफ़ेद डंठल वाला हिस्सा डालकर 2 मिनट तक पकाएं, फिर सब्ज पत्तों वाला हिस्सा और पालक डालकर 1 मिनट मजीद पकाएं। जब सब्जियों में अच्छी तरह उबाल आ जाए तो ये डिश तैयार है।
0: और अब वक्त हुआ है खाना पकाने से मुतालिक मालूमात देने का। आज हम इर्तकाई मराहिल तय करती डिब्बाबंद अशिया के बारे में बात करेंगे। साल 2011 में आने वाले मशरकी जापान के हौलनाक जलजले के बाद डिब्बाबंद अशिया ने एक नए अंदाज से अपनी जानिब तवज्जो हासिल की। साने के बाद डिब्बाबंद खाने हंगामी हालात की एक मकबूल खुराक बन गए हैं और लोगों ने इनके जायके को एक बार फिर दरियाफ्त किया और उन्हें घर में बनाए जाने वाले खानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
1: जापान में डिब्बाबंद खाने बहुत महंगे हुआ करते थे और आबादी का एक मखसूस तबका ही इन्हें इस्तेमाल कर सकता था। 1923 में आने वाले अजीम कांतो जलजिले के बाद बहुत से डिब्बाबंद खाने हंगामी खुराक के तौर पर तकसीम किए गए और अवामुन्नास में मकबूल हुए। दूसरी आलमी जंग के बाद गजाई किल्लत के दौरान डिब्बाबंद खाने बहुत कारामद साबित हुए, लेकिन जब जापान ने मुल्क गिर तरसील का जाल फैलाया और ताज़ा खुराक की दस्तियाबी सहल हो गई तो डिब्बाबंद खानों की तलब में कमी आ गई।
0: 6 साल कबल आने वाले जलजले के बाद इन्हें एक बार फिर फरोग मिला और उनका इर्तका जारी है। आजकल सुपरमार्केट्स में बड़ी मुनफरिद डिब्बाबंद मसनूआत मसलन जापानी रोल ऑमलेट और डिब्बाबंद ब्रेड भी फरोख्त हो रही है। हाल ही में नित नए नफीस खाने जैसा कि धुआं लगे ऑयस्टर्स, जड़ी बूटियों के जायके वाली भुनी मुर्गी और दीगर खाने जो पुरताश डिश के तौर पर खाए जाते हैं काफ़ी मकबूल हैं। जापान में बिकने वाले ज़्यादातर डिब्बाबंद खानों की कीमत तकरीबन $1 से $4 तक होती है, लेकिन महंगे डिब्बाबंद खानों की कीमत $45 भी हो सकती है।
1: जापान में डिब्बाबंद खानों के कई बार खुल चुके हैं जहां आप मशरूबात के साथ कई इकसाम के डिब्बाबंद खानों से भी लुत्फंदोज हो सकते हैं। मेन्यू की लिस्ट में सिर्फ डिब्बाबंद खाने होते हैं। बार के शेल्फ किसी लाइब्रेरी के बुक शेल्फ की मानिंद रंग बिरंगे डिब्बाबंद खानों से भरे होते हैं जहां से आप अपने पसंदीदा डब्बे का इंतखाब कर सकते हैं। सामाइन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं। उम्मीद है कि अगली मर्तबा भी आप हमारे साथ होंगे।
0: हामिद, मेरे दिमाग में तो आज का प्रोग्राम सुनकर डिब्बाबंद खानों से पकवान बनाने के नित नए ख्यालात आने शुरू हो गए। अब तक तो मैंने इनकी कुछ ही अकसाम इस्तेमाल की थी।
1: चले जनाब, देर आया, दुरुस्त आया, ख्याल तो आया। खैर, जापान में सोफिया मैंने देखा है कि डिपार्टमेंट स्टोर्स में अलग से डिब्बाबंद खानों का एक हिस्सा बना हुआ होता है जिसे देखकर अंदाजा होता है कि जापान में इनका कितना इस्तेमाल है।
0: जी, और मैं भी यही देख कर हैराना चाहती हूँ कि इतनी बेशुमार अकसाम होती हैं उनकी। यहाँ तक कि जापानी शोगस यानी साले नौ के पकवान के लिए भी अब केन में ये खाने दस्तियाब में होते हैं।
1: कमाल है जनाब। आगे

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 29 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। चीन के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को देश की निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया गया है। इनमें राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान तथा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनियां शामिल हैं। गौरतलब है कि चीन इस सूची में शामिल कंपनियों और संगठनों को दुर्लभ धातुओं सहित नागरिक, सैन्य, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ये 20 संगठन जापान की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में शामिल हैं। चीनी मंत्रालय ने 20 अन्य जापानी कंपनियों को निगरानी सूची में शामिल करके उन पर निर्यात नियंत्रण और कड़ा करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन कंपनियों को बेची गई वस्तुओं के अंतिम उपयोग के उद्देश्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे पहले फरवरी में भी चीन ने 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया था। वेनेजुएला में बुधवार को आए 2 विनाशकारी भूकंपों में लापता हुए लोगों की तलाश में बचाव दल और पड़ोसी देश जुटे हुए हैं। 1,450 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। संसदीय अध्यक्ष होर्हे रोड्रिगेज ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि 3,150 लोग घायल हुए हैं और 12,721 लोग विस्थापित हुए हैं। 750 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। स्पेसएक्स द्वारा प्रबंधित स्टारलिंक ने घोषणा की है कि कंपनी वेनेजुएला के प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा निःशुल्क प्रदान कर रही है। विभिन्न देशों से कई बचावकर्मी क्षतिग्रस्त इमारतों के नीचे फंसे लोगों की तलाश करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनके ये प्रयास समय के खिलाफ दौड़ जैसे हैं क्योंकि 72 घंटे के बाद जीवित रहने की संभावना तेजी से कम हो जाती है। अमरीकी समाचार केंद्र एक्सियोस के अनुसार अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं और वो मंगलवार को बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। एक्सियोस ने रविवार को एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी के हवाले से ये खबर दी। वार्ता कतर की राजधानी दोहा में होने की उम्मीद है। ईरान ने बृहस्पतिवार को ओमान के तट के पास से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर हमला किया था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में एक दूसरे पर गोलाबारी की। ईरान उन जहाजों पर अपने हमलों को उचित ठहरा रहा है जो उसके द्वारा निर्धारित मार्गों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर ये मार्ग निर्धारित किए गए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने रविवार को इराक में पत्रकारों से कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य का प्रबंधन केवल ईरान के हाथ में है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हमलों को संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन बताते हुए इनकी निंदा की है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने रविवार को सोल में दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ वार्ता की। वे कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच, साथ ही जापान, अमरीका और दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। मंत्रियों ने स्थिर व भविष्योन्मुखी रक्षा सहयोग एवं आदान प्रदान को और विकसित करने के लिए संवाद जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। पदभार संभालने के बाद कोइजुमी पहली बार दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। उन्होंने रविवार सुबह आन से लगभग एक घंटे मुलाकात की। ये वार्ता दोनों देशों के बीच पारस्परिक मंत्री स्तरीय आदान प्रदान के तहत आयोजित की गई। दोनों मंत्रियों ने मानवीय उद्देश्यों के लिए संयुक्त खोज व बचाव अभ्यासों की बहाली की जमकर सराहना की। जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल और दक्षिण कोरियाई नौसेना की भागीदारी वाला यह अभ्यास लगभग 9 वर्षों में पहली बार इस महीने आयोजित किया गया। उधर उत्तर कोरिया का परमाणु व मिसाइल विकास कार्यक्रम जारी है और वो रूस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रियों ने कोरियाई प्रायद्वीप को पूर्णतः परमाणु अस्त्र मुक्त बनाने और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सहयोग जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अणुबम उत्तरजीवियों यानी हिबाकुशा के समूह व अन्य लोगों ने पुष्टि की है कि परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की रचना के लिए उन्हें युवाओं के बीच अपनी गतिविधियों का विस्तार करना चाहिए। जापान परमाणु अस्त्र उन्मूलन अभियान नामक एक समूह की स्थापना के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को टोक्यो में लगभग 60 लोगों ने एक बैठक में भाग लिया। समूह के प्रमुख तानाका तेरुमी ने बैठक को संबोधित किया। वे एक अन्य हिबाकुशा समूह निहोन हिदांक्यो के सह अध्यक्ष भी हैं, जिसे परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की रचना के प्रयासों के लिए 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तानाका ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि निहोन हिदांक्यो को मिला ये सम्मान परमाणु हथियारों के उन्मूलन की दिशा में गति प्रदान करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि आज विश्व तेजी से युद्ध की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तानाका ने मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि युद्ध से ज्यादा निरर्थक कुछ भी नहीं है। जापान के थल आत्मरक्षा बल यानी GSDF का कहना है कि उसने पहली बार देश के सबसे पूर्वी द्वीप पर सतह से जहाज पर मार करने में सक्षम मिसाइल लॉन्चर तैनात किया है। विश्लेषकों के अनुसार प्रशांत महासागर में अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के जापान के प्रयासों के तहत ये तैनाती की गई है। GSDF ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने इस महीने मिनामी तोरिशिमा द्वीप पर सतह से जहाज पर मार करने में सक्षम टाइप 12 मिसाइल लॉन्चर और लक्ष्य पहचानने में सक्षम टोही ड्रोन विमान तैनात किए। टाइप 12 मिसाइलों की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। फिलहाल इन मिसाइलों को द्वीप पर नहीं लाया गया है। मिनामी तोरिशिमा टोक्यो के ओगासावारा द्वीप समूह का हिस्सा है और ये जापान के मुख्य द्वीप होनशू से लगभग 2000 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। GSDF अप्रैल 2027 में शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष से प्रक्षेपण अभ्यास शुरू करना चाहता है।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को देश की निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया गया है। इनमें राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान तथा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनियां शामिल हैं। गौरतलब है कि चीन इस सूची में शामिल कंपनियों और संगठनों को दुर्लभ धातुओं सहित नागरिक, सैन्य, दोहरे उपयोग वाले वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ये 20 संगठन जापान की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में शामिल हैं। चीनी मंत्रालय ने 20 अन्य जापानी कंपनियों को निगरानी सूची में शामिल करके उन पर निर्यात नियंत्रण और कड़ा करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन कंपनियों को बेची गई वस्तुओं के अंतिम उपयोग के उद्देश्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे पहले फरवरी में भी चीन ने 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया था।
0: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: お帰りなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: 長野कैसा रहा？
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: 写真をたくさん撮りました。
1: खूब तस्वीरें खींची।
3: それからおそばも食べました。
1: उसके बाद そばも食べ
3: た。とても美味しかったです。
1: बहुत स्वादिष्ट था।
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा,
2: そうですか。
1: अच्छा।
2: よかったですね。
1: ये तो अच्छी बात है।
0: मिया ने आगे कहा,
3: 長野の人はとても親切でした。
1: 長野के लोग बहुत भले थे।
0: फिर ताम ने कहा,
4: तनोशी ल्योकोह देश्ता ने।
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
0: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु,
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: すごく
0: का अर्थ है बहुत और
5: तनोशिकत्ता देसु
0: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: तनोशी
0: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता।
1: तो
5: तनोशी देसु
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: तनोशिकत्ता देसु
1: यानी मजेदार था।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
5: たのしかったです。すごくたのしかったです。
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
5: おいしかったです。
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
5: おいしいです
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
5: よかったです
1: भी है, जो
5: いいです
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है।
0: ई देस का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देस हटाकर देशता लगाते हैं।
0: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
5: शिनसेत्सुना
0: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: शिनसेत्सु देसु
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
5: शिनसेत्सु देशता।
0: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
5: तनोशी ल्योको देसु
0: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: たのしい旅行でした。
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
0: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
0: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देश्ता, यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया,
6: योकात्तो देस,
0: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा,
5: योकात्ता
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा,
6: तोतेमो निगियाका देस्ता,
0: बहुत चहल पहल थी।
5: तोतेमो
1: का अर्थ है बहुत,
5: निगियाका देस्ता
1: है ना विशेषण,
5: निगियाका ना
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
0: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देस्ता का? योकात्ता देस। तोतेमो निगियाका देस्ता।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
5: सुबाराशी, सुबाराशी।
6: सुबाराशिकात्ता देस।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारू जी की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओकाएरिनासाई,
5: ओकाएरिनासाई
1: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
5: ओकाएरी,
1: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं। और इसका बहुत औपचारिक रूप है
5: ओकाएरिनासाईमासे,
1: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दोउ देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकात्ता देसु। शाशिन ओ ताकुसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
1: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं, जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
0: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
1: जैसे क्योतो टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
0: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 29 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। चीन के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को देश की निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया गया है। इनमें राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान तथा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनियां शामिल हैं। गौरतलब है कि चीन इस सूची में शामिल कंपनियों और संगठनों को दुर्लभ धातुओं सहित नागरिक, सैन्य, दोहरे उपयोग वाले वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ये 20 संगठन जापान की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में शामिल हैं। चीनी मंत्रालय ने 20 अन्य जापानी कंपनियों को निगरानी सूची में शामिल करके उन पर निर्यात नियंत्रण और कड़ा करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन कंपनियों को बेची गई वस्तुओं के अंतिम उपयोग के उद्देश्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे पहले फरवरी में भी चीन ने 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया था। वेनेजुएला में बुधवार को आए 2 विनाशकारी भूकंपों में लापता हुए लोगों की तलाश में बचाव दल और पड़ोसी देश जुटे हुए हैं। 1450 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। संसदीय अध्यक्ष होर्हे रोड्रिगेज ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि 3150 लोग घायल हुए हैं और 12721 लोग विस्थापित हुए हैं। 750 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। स्पेसएक्स द्वारा प्रबंधित स्टारलिंक ने घोषणा की है कि कंपनी वेनेजुएला के प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा निःशुल्क प्रदान कर रही है। विभिन्न देशों से कई बचावकर्मी क्षतिग्रस्त इमारतों के नीचे फंसे लोगों की तलाश करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनके ये प्रयास समय के खिलाफ दौड़ जैसे हैं क्योंकि 72 घंटे के बाद जीवित रहने की संभावना तेजी से कम हो जाती है। अमरीकी समाचार केंद्र एक्सियोस के अनुसार अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं और वो मंगलवार को बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। एक्सियोस ने रविवार को एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी के हवाले से ये खबर दी। वार्ता कतर की राजधानी दोहा में होने की उम्मीद है। ईरान ने बृहस्पतिवार को ओमान के तट के पास से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर हमला किया था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में एक दूसरे पर गोलाबारी की। ईरान उन जहाजों पर अपने हमलों को उचित ठहरा रहा है जो उसके द्वारा निर्धारित मार्गों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर ये मार्ग निर्धारित किए गए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने रविवार को इराक में पत्रकारों से कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य का प्रबंधन केवल ईरान के हाथ में है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हमलों को संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन बताते हुए इनकी निंदा की है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने रविवार को सोल में दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ वार्ता की। वे कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच, साथ ही जापान, अमरीका और दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। मंत्रियों ने स्थिर व भविष्योन्मुखी रक्षा सहयोग एवं आदान प्रदान को और विकसित करने के लिए संवाद जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। पदभार संभालने के बाद कोइजुमी पहली बार दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। उन्होंने रविवार सुबह आन से लगभग एक घंटे मुलाकात की। ये वार्ता दोनों देशों के बीच पारस्परिक मंत्री स्तरीय आदान प्रदान के तहत आयोजित की गई। दोनों मंत्रियों ने मानवीय उद्देश्यों के लिए संयुक्त खोज व बचाव अभ्यासों की बहाली की जमकर सराहना की। जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल और दक्षिण कोरियाई नौसेना की भागीदारी वाला यह अभ्यास लगभग 9 वर्षों में पहली बार इस महीने आयोजित किया गया। उधर उत्तर कोरिया का परमाणु व मिसाइल विकास कार्यक्रम जारी है और वो रूस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रियों ने कोरियाई प्रायद्वीप को पूर्णतः परमाणु अस्त्र मुक्त बनाने और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सहयोग जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अणुबम उत्तरजीवियों यानी हिबाकुशा के समूह व अन्य लोगों ने पुष्टि की है कि परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की रचना के लिए उन्हें युवाओं के बीच अपनी गतिविधियों का विस्तार करना चाहिए। जापान परमाणु अस्त्र उन्मूलन अभियान नामक एक समूह की स्थापना के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को टोक्यो में लगभग 60 लोगों ने एक बैठक में भाग लिया। समूह के प्रमुख तानाका तेरुमी ने बैठक को संबोधित किया। वे एक अन्य हिबाकुशा समूह निहोन हिदांक्यो के सह अध्यक्ष भी हैं, जिसे परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की रचना के प्रयासों के लिए 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तानाका ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि निहोन हिदांक्यो को मिला ये सम्मान परमाणु हथियारों के उन्मूलन की दिशा में गति प्रदान करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि आज विश्व तेजी से युद्ध की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तानाका ने मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि युद्ध से ज्यादा निरर्थक कुछ भी नहीं है। जापान के थल आत्मरक्षा बल यानी GSDF का कहना है कि उसने पहली बार देश के सबसे पूर्वी द्वीप पर सतह से जहाज पर मार करने में सक्षम मिसाइल लॉन्चर तैनात किया है। विश्लेषकों के अनुसार प्रशांत महासागर में अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के जापान के प्रयासों के तहत ये तैनाती की गई है। GSDF ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने इस महीने मिनामी तोरिशिमा द्वीप पर सतह से जहाज पर मार करने में सक्षम टाइप 12 मिसाइल लॉन्चर और लक्ष्य पहचानने में सक्षम टोही ड्रोन विमान तैनात किए। टाइप 12 मिसाइलों की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। फिलहाल इन मिसाइलों को द्वीप पर नहीं लाया गया है। मिनामी तोरिशिमा टोक्यो के ओगासावारा द्वीप समूह का हिस्सा है और ये जापान के मुख्य द्वीप होन्शु से लगभग 2000 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। GSDF अप्रैल 2027 में शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष से प्रक्षेपण अभ्यास शुरू करना चाहता है।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को देश की निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया गया है। इनमें राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान तथा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनियां शामिल हैं। गौरतलब है कि चीन इस सूची में शामिल कंपनियों और संगठनों को दुर्लभ धातुओं सहित नागरिक, सैन्य, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ये 20 संगठन जापान की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में शामिल हैं। चीनी मंत्रालय ने 20 अन्य जापानी कंपनियों को निगरानी सूची में शामिल करके उन पर निर्यात नियंत्रण और कड़ा करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन कंपनियों को बेची गई वस्तुओं के अंतिम उपयोग के उद्देश्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे पहले फरवरी में भी चीन ने 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया था।
0: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: お帰りなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: 長野कैसा रहा？
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: 写真をたくさん撮りました。
1: खूब तस्वीरें खींची।
3: それからおそばも食べました。
1: उसके बाद そばも食べ
3: た。とても美味しかったです。
1: बहुत स्वादिष्ट था।
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा,
2: そうですか。
1: अच्छा।
2: よかったですね。
1: ये तो अच्छी बात है।
0: मिया ने आगे कहा,
3: 長野の人はとても親切でした。
1: 長野के लोग बहुत भले थे।
0: फिर ताम ने कहा,
4: तनोशी ल्योकोर देश्ताने।
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
0: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु,
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: すごく
0: का अर्थ है बहुत और
5: तनोशिकत्ता देसु
0: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: तनोशी
0: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता।
1: तो
5: तनोशी देसु
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: तनोशिकत्ता देसु
1: यानी मजेदार था।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
5: ओइशिकत्ता देसु,
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
5: ओइशी देसु
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
5: योकत्ता देसु
1: भी है, जो
5: ई देसु
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है।
0: ई देस का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देस हटाकर देशता लगाते हैं।
0: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
5: शिनसेत्सुना
0: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: शिनसेत्सु देसु। शिनसेत्सु देसु
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
5: शिनसेत्सु देशता।
0: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
5: तनोशी ल्योको देसु
0: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: तनोशी ल्योको देशता।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
2: ओसाका वा दो देश्ता का?
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
0: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
0: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देश्ता, यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया,
6: योकात्तो देस,
0: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा,
5: योकात्ता
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा,
6: तोतेमो निगियाका देश्ता,
0: बहुत चहल पहल थी।
5: तोतेमो
1: का अर्थ है बहुत,
5: निगियाका देश्ता
1: है ना विशेषण,
5: निगियाका ना
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
0: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्ता का? योकात्ता देस। तोतेमो निगियाका देश्ता।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
5: सुबाराशी, सुबाराशी।
6: सुबाराशिकात्ता देस।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारूजी की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओकाएरिनासाई,
5: ओकाएरिनासाई
1: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
5: ओकाएरी,
1: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं। और इसका बहुत औपचारिक रूप है
5: ओकाएरिनासाइमासे,
1: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देश्ता का?
3: सुगोकु तानोशिकात्ता देस। शशिन ओ ताकुसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
1: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं, जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
0: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
1: जैसे क्योतो टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
0: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी वजीर दिफा कोइज़मी शिंजिरू ने इतवार के रोज सियोल में जनूबी कोरिया के वजीर बराए कौमी दिफा आंग्यो बाक के साथ बातचीत की। उन्होंने जजीरनुमा कोरिया को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए जापान और जनूबी कोरिया के साथ साथ जापान अमरीका और जनूबी कोरिया के दरमियान तआवुन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वुज़रा ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि वो मुस्तहकम मुस्तकबिल पर मबनी दिफाई तआवुन और तबादलों को मजीद फरोग देने के लिए राबते बरकरार रखेंगे। कोइज़मी ने जो ओहदा संभालने के बाद पहली बार जनूबी कोरिया का दौरा कर रहे हैं इतवार की सुबह आन से तकरीबन एक घंटे तक मुलाकात की। ये बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी वजारती तबादलों के एक जुज के तौर पर हुई। दोनों वुज़रा ने इंसानी हमदर्दी के मकासद के लिए तलाश और बचाव की मुश्तरका मशकें दोबारा शुरू करने की बहुत तारीफ की। जापान की बहरी सेल डिफेंस फोर्स और जनूबी कोरियाई बहरिया की ये मशक तकरीबन 9 सालों में पहली बार रवामा मुनक्किद हुई। शिमाली कोरिया अपनी जौहरी और मिजाइल तरक्की जारी रखे हुए है और रूस के साथ फौजी तआवुन को गहरा कर रहा है। वुज़रा ने जजीरा नुमा कोरिया को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से पाक बनाने और देरपा अमन के कायम के लिए अमरीका के साथ दो तरफा और सहफरीकी तआवुन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया। एटमी बमबारी के मुतासरीन हिबाकुशा कहलाने वाले अफराद के एक ग्रुप और दीगर ने इस बात की तस्दीक की है कि जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के ख्वाब की ताबीर पाने की गर्ज से उन्हें नौजवान नस्ल के लिए अपनी सरगर्मियों को बढ़ाना चाहिए। जौहरी हथियारों के खात्मे की जापान मुहिम नामी इस ग्रुप की तश्कील के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर तकरीबन 60 अफराद ने टोक्यो में इतवार को मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। ग्रुप के सरबरा तनाका तेरूमी ने तकरीर की। वो एक और हिबाक्षा ग्रुप निहोन हिदांक्यो के शरीक सरबरा भी हैं। निहोन हिदांक्यो ने जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के असूल की कोशिशों के लिए 2024 में नोबेल अमन इनाम हासिल किया था। जनाब तनाका ने इस मौके का इस तवक्को का इजहार किया कि निहोन हिदांक्यो को ये एजाज मिलने से जौहरी हथियारों के खात्मे की जानिब रफ्तार बढ़ेगी। तहम उन्होंने तस्लीम किया कि वो जंग छेड़े जाने की तरफ तेजी से तब्दील होती महसूस कर रहे हैं। तनाका ने इसे तब्दील करने की जरूरत पर रोशनी डाली जिसे उन्होंने मौजूदा चैलेंजिंग सूरत हाल के तौर पर बयान किया। उन्होंने जोर दिया कि नौजवानों को इस हकीकत से रोशनास करवाने की अहमियत है कि जंग से ज्यादा बेमानी कुछ नहीं है। जापान की बरी सेल डिफेंस फोर्स GSDF का कहना है कि उसने पहली बार मुल्क के इंतहाई मशरकी जजीरे पर जमीन से समंदर तक मार करने वाला मिसाइल लॉन्चर तैनात किया है। तजियाकार इस तैनाती को मुल्क की बहरुल कायल की अतराफ के दिफा को तकवियत देने की कोशिश का हिस्सा करार देते हैं। GSDF ने इतवार के रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि उसने इस महीने मिनामी तोरीशिमा जजीरे पर टाइप 12 किस्म का जमीन से समंदर तक मार करने वाला मिसाइल लॉन्चर और हदफ के तयन के लिए जासूस ड्रोन तैनात किए हैं। जमीन से समंदर पर मार करने वाले टाइप 12 मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। मिसाइल इस बार जजीरे पर नहीं लाए गए। मिनामी तोरीशिमा टोक्यो के ओगासावारा जजायर का हिस्सा है और ये जापान के मरकजी जजीरे होनशू से तकरीबन 2000 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाके है। GSDF को उम्मीद है कि वो अप्रैल 2027 में शुरू होने वाले अगले माली साल के अवाइल से फायरिंग की मशकें शुरू कर देगी।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि 20 जापानी कंपनियों और इदारों को मुल्क की बरामदी कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। वेनेजुएला में बुध को आए 2 तबाहकुन जल्जलों के बाद इमदादी टीमें मलबे तले अफराद को तलाश कर रही हैं। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 29 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। चीन के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को देश की निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया गया है। इनमें राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान तथा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनियां शामिल हैं। गौरतलब है कि चीन इस सूची में शामिल कंपनियों और संगठनों को दुर्लभ धातुओं सहित नागरिक, सैन्य, दोहरे उपयोग वाले वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ये 20 संगठन जापान की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में शामिल हैं। चीनी मंत्रालय ने 20 अन्य जापानी कंपनियों को निगरानी सूची में शामिल करके उन पर निर्यात नियंत्रण और कड़ा करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन कंपनियों को बेची गई वस्तुओं के अंतिम उपयोग के उद्देश्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे पहले फरवरी में भी चीन ने 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया था। वेनेजुएला में बुधवार को आए 2 विनाशकारी भूकंपों में लापता हुए लोगों की तलाश में बचाव दल और पड़ोसी देश जुटे हुए हैं। 1,450 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। संसदीय अध्यक्ष होर्हे रोड्रिगेज ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि 3,150 लोग घायल हुए हैं और 12,721 लोग विस्थापित हुए हैं। 750 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। स्पेसएक्स द्वारा प्रबंधित स्टारलिंक ने घोषणा की है कि कंपनी वेनेजुएला के प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा निःशुल्क प्रदान कर रही है। विभिन्न देशों से कई बचावकर्मी क्षतिग्रस्त इमारतों के नीचे फंसे लोगों की तलाश करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनके ये प्रयास समय के खिलाफ दौड़ जैसे हैं क्योंकि 72 घंटे के बाद जीवित रहने की संभावना तेजी से कम हो जाती है। अमरीकी समाचार केंद्र एक्सियोस के अनुसार अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं और वो मंगलवार को बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। एक्सियोस ने रविवार को एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी के हवाले से ये खबर दी। वार्ता कतर की राजधानी दोहा में होने की उम्मीद है। ईरान ने बृहस्पतिवार को ओमान के तट के पास से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर हमला किया था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में एक दूसरे पर गोलाबारी की। ईरान उन जहाजों पर अपने हमलों को उचित ठहरा रहा है जो उसके द्वारा निर्धारित मार्गों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर ये मार्ग निर्धारित किए गए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने रविवार को इराक में पत्रकारों से कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य का प्रबंधन केवल ईरान के हाथ में है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हमलों को संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन बताते हुए इनकी निंदा की है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने रविवार को सोल में दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ वार्ता की। वे कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच, साथ ही जापान, अमरीका और दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। मंत्रियों ने स्थिर व भविष्योन्मुखी रक्षा सहयोग एवं आदान प्रदान को और विकसित करने के लिए संवाद जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। पदभार संभालने के बाद

0: कोइजुमी पहली बार दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। उन्होंने रविवार सुबह आन से लगभग 1 घंटे मुलाकात की। ये वार्ता दोनों देशों के बीच पारस्परिक मंत्री स्तरीय आदान प्रदान के तहत आयोजित की गई। दोनों मंत्रियों ने मानवीय उद्देश्यों के लिए संयुक्त खोज व बचाव अभ्यासों की बहाली की जमकर सराहना की। जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल और दक्षिण कोरियाई नौसेना की भागीदारी वाला यह अभ्यास लगभग 9 वर्षों में पहली बार इस महीने आयोजित किया गया। उधर उत्तर कोरिया का परमाणु व मिसाइल विकास कार्यक्रम जारी है और वो रूस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रियों ने कोरियाई प्रायद्वीप को पूर्णतः परमाणु अस्त्र मुक्त बनाने और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सहयोग जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अणुबम उत्तरजीवियों यानी हिबाकुशा के समूह व अन्य लोगों ने पुष्टि की है कि परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की रचना के लिए उन्हें युवाओं के बीच अपनी गतिविधियों का विस्तार करना चाहिए। जापान परमाणु अस्त्र उन्मूलन अभियान नामक एक समूह की स्थापना के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को टोक्यो में लगभग 60 लोगों ने एक बैठक में भाग लिया। समूह के प्रमुख तानाका तेरुमी ने बैठक को संबोधित किया। वे एक अन्य हिबाकुशा समूह निहोन हिदांक्यो के सह अध्यक्ष भी हैं, जिसे परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की रचना के प्रयासों के लिए 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तानाका ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि निहोन हिदांक्यो को मिला ये सम्मान परमाणु हथियारों के उन्मूलन की दिशा में गति प्रदान करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि आज विश्व तेजी से युद्ध की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तानाका ने मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि युद्ध से ज्यादा निरर्थक कुछ भी नहीं है। जापान के थल आत्मरक्षा बल यानी GSDF का कहना है कि उसने पहली बार देश के सबसे पूर्वी द्वीप पर सतह से जहाज पर मार करने में सक्षम मिसाइल लॉन्चर तैनात किया है। विश्लेषकों के अनुसार प्रशांत महासागर में अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के जापान के प्रयासों के तहत ये तैनाती की गई है। GSDF ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने इस महीने मिनामी तोरिशिमा द्वीप पर सतह से जहाज पर मार करने में सक्षम टाइप 12 मिसाइल लॉन्चर और लक्ष्य पहचानने में सक्षम तो ही ड्रोन विमान तैनात किए। टाइप 12 मिसाइलों की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। फिलहाल इन मिसाइलों को द्वीप पर नहीं लाया गया है। मिनामी तोरिशिमा टोक्यो के ओगासावारा द्वीप समूह का हिस्सा है और ये जापान के मुख्य द्वीप होनशू से लगभग 2000 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। GSDF अप्रैल 2027 में शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष से प्रक्षेपण अभ्यास शुरू करना चाहता है।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को देश की निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया गया है। इनमें राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान तथा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनियां शामिल हैं। गौरतलब है कि चीन इस सूची में शामिल कंपनियों और संगठनों को दुर्लभ धातुओं सहित नागरिक सैन्य दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ये 20 संगठन जापान की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में शामिल हैं। चीनी मंत्रालय ने 20 अन्य जापानी कंपनियों को निगरानी सूची में शामिल करके उन पर निर्यात नियंत्रण और कड़ा करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन कंपनियों को बेची गई वस्तुओं के अंतिम उपयोग के उद्देश्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे पहले फरवरी में भी चीन ने 20 जापानी कंपनियों और संगठनों को निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया था।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देस। शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: お帰りなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: नागानो कैसा रहा?
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: 写真をたくさん撮りました。
1: खूब तस्वीरें खींची।
3: それからおそばも食べました。
1: उसके बाद सोबा भी खाया।
3: とても美味しかったです。
1: बहुत स्वादिष्ट था।
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा,
2: そうですか。
1: अच्छा।
2: よかったですね。
1: ये तो अच्छी बात है।
0: मिया ने आगे कहा,
3: 長野の人はとても親切でした。
1: नागानो के लोग बहुत भले थे।
0: फिर ताम ने कहा,
4: तनोशी ल्योकोह देश्ता ने।
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
0: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देस,
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: すごく
0: का अर्थ है बहुत और
5: तानोशिकत्ता देस
0: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: तानोशी
0: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता।
1: तो
5: तानोशी देस
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: तानोशिकत्ता देस
1: यानी मजेदार था।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
5: ओइशिकत्ता देस
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
5: ओइशी देस
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
5: योकत्ता देस
1: भी है जो
5: ई देस
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है।
0: ई देश का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देस हटाकर देशता लगाते हैं।
0: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
5: शिनसेत्सुना
0: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: शिनसेत्सु देस। शिनसेत्सु देस
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
5: शिनसेत्सु देशता।
0: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
5: तानोशी ल्योको देस
0: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: 楽しい旅行でした。
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
0: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
0: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देश्ता, यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया,
6: योकात्ता देस,
0: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा,
5: योकात्ता
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा,
6: तोतेमो निगियाका देश्ता,
0: बहुत चहल पहल थी।
5: तोतेमो
1: का अर्थ है बहुत,
5: निगियाका देश्ता
1: है ना विशेषण,
5: निगियाका ना
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
0: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्ता का? योकात्ता देस। とてもにぎやかでした。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
5: सुबाराशी। सुबाराशी
6: सुबाराशिकात्ता देस।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारू जी की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओकाएरी नासाई।
5: ओकाएरी नासाई
1: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
5: ओकाएरी,
1: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं, और इसका बहुत औपचारिक रूप है
5: ओकाएरी नासाइमासे,
1: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दोउ देशिता का?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
1: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
0: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
1: जैसे क्योतो टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
0: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: です。
1: 写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
1: 長野の人はとても親切でした。
3: 楽しい旅行でしたね。
4: अब हम इस मकाल में की वजाहत करते हैं।
5: हारूसा मियां से कहती हैं,
2: ओ काएरी नासाई।
4: दोबारा खुश आमदेद।
2: नागानो वा दो देश्ता का?
4: नागानो कैसा था?
5: मियां जवाब देती है,
1: सुगोक तनुशकत्ता देस।
4: बहुत मजा आया।
1: शाशिन ओ तकसान तोरी मस्ता।
4: बहुत सारी तस्वीरें खींची।
1: सोरे करा ओ सोबा मो तबे मस्ता।
4: इसके अलावा सोबा नूडल्स भी खाए।
1: तोते मो ओइशकत्ता देस।
4: बहुत मजेदार थे।
5: हारूसा कहती हैं,
2: सो देस का।
4: अच्छा।
2: よかったですね。
4: बहुत अच्छी बात है।
5: मियां बाजारी रखती है।
1: नागानो の人はとても親切でした。
4: नागानो के लोग बहुत हमदर्द थे।
5: ताम कहती है,
3: 楽しい旅行でしたね。
4: पुरलुत सफर था ना?
5: लगता है उसका नागानो का सफर बहुत अच्छा था। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी नागानो जाऊं।
4: छुट्टियों में जरूर जाएं। लेकिन फिलहाल सामेइन को आज का मकालमा एक बार फिर सुनवाते हैं।
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか?
1: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
1: 長野の人はとても親切でした。
3: 楽しい旅行でしたね。
5: आज के सबक का कलीदी जुमला है, बहुत मजा आया।
1: すごく楽しかったです。
5: अगर आप इसे याद कर लें तो इसकी मदद से अपने किसी तजर्बे के बारे में तासुरात बता सकते हैं।
4: सुगोकु के मानी है वाकई ये बहुत ज्यादा, और तनुष्कत्ता देस यानी मजा आया। आज का नुक्ता माजी के किसी तजर्बे के बारे में तासुरात के इजहार से मुतालिक है। ये तो आपको याद ही होगा कि फेल का सिगा माजी बनाने के लिए उसके आखिरी मस को मश्ता में तब्दील किया जाता है। इसमें सिफत या इस्म का माजी का सिगा इस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले ई इसमें सिफत को देखते हैं। یہ وہ اسم صفت ہوتے ہیں جن کا اختتام ای پر ہوتا ہے، مثلا تانوشی یعنی مزہ آ رہا ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتا لگایا جائے گا، چنانچہ تانوشی دس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوش کتا دس یعنی مزہ آیا۔
5: تو سامعین سنیے اور دہرائیے، خیال رکھیے کہ کتا کے تلفظ میں کا اور تا کے درمیان ہلکا سا وقفہ ہے۔
6: تانوش کتا دس، すごく楽しかったです。
4: आज के मकालमे में एक और मिसाल ओइशकत्ता देस है, जो ओइशी देस यानी मजेदार है का माजी का सिगा है। इसी तरह योकत्ता देस है, जो ई देस यानी अच्छा है का माजी का सिगा है।
5: ई का सिगा माजी योकत्ता आम तरीका कार से हटकर है, ऐसा ही है ना?
4: जी हाँ, इसे इसी तरह याद कर लेना बेहतर होगा। نہ اس میں صفت اور اسم کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے دس کو بدل کر دشتا کرنا ہوگا۔
5: نہ اس میں صفت کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔
4: جی ہاں، یہ اس میں صفت اگر اسم سے پہلے آئے یعنی اسم کی تشریح کرے تو اس کے آخر میں اضافی نہ لگتا ہے۔ مثلا شنسٹس یعنی ہمدرد، کسی اسم سے پہلے شنسٹس نہ ہو جائے گا۔ جملے میں اکیلا استعمال ہونے کی صورت میں یہ شنسٹس دس ہوگا۔ شنسٹس دس کا ماضی کا جملہ بنانے کے لیے آخری دس کو دشتا کرنا ہوگا، چنانچہ یہ بنے گا شنسٹسو دشتا۔ اگر جملے میں دس سے پہلے اسم ہے جیسا کہ تانوشی ریوکو دس، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا، چنانچہ اس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشی ریوکو دشتا۔
5: اور اب سفر کے تاثرات سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
7: اوساکا وا دو دشتا کا؟
8: یوکاتا دس، توتیمو نیگیاکا دشتا۔
4: और अब मकालमे की तशरीह।
7: ओसाका वा दो देश्ता का?
5: ओसाका कैसा था?
4: ओसाका मगरबी जापान का एक बड़ा शहर है। दो देश्ता का के मायने है कैसा था। इसमें दो यानी कैसा के बाद चूंकि देश्ता आया है तो आप ये जान सकते हैं कि ये माजी के तजर्बे की बात है।
8: योकात्ता देस,
5: अच्छा था।
4: योकात्ता, ये ई इसमें सिफत ई यानी अच्छा का माजी का सिगा है।
8: तोतेमो निगिया का देश्ता,
5: बहुत पर रौनक था।
4: तोतेमो के मायने है बहुत, और نیگیا کا دشتا نہ اس میں صفت نیگیا کا نہ یعنی پر رونق کا ماضی کا صیغہ ہے۔
5: تو سامعین مکالمہ ایک بار پھر سنیے اور جواب دہرائیے۔
6: اوساکا وا دو دشتا کا؟ یوکاتا دیسو۔